The text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text, the text,